0: सात डबल रोल, उता चोर यता पुलिस। सानो छँदा सीता और गीता भन्ने हिन्दी फिल्म हेरेको थिएँ, उता निशा यता सुन्तली।
1: मलाई त सुन्तली जस्ता पनि चोर चोर लाग्न थाल्यो है साहब।
0: साँच्ची अचेल काठमाडौँमा चोरको बिक्री किन कम भयो भनेको त कुरो यस्तो पो रहेछ। साँच्ची साहब, निशा चाहिँ कहाँ गायब भइसक्यो।